नमस्कार श्रोताओं, हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी

0: खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती
2: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात, रात 10:30 पर, और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेम्बर म्यूजिक से लेकर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किया जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एसएल कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियाँ हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्या करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों

0: का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16th सेंचुरी में
1: जी
0: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ है 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, थ्री वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपनी लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडी वेरी।
1: अच्छा।
0: ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
0: अब स्टडी वेरियस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है, और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी।
0: वो स्टडी वेरियस मैक है, और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
0: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
0: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
0: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
0: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
0: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
0: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह। हाँ।
0: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17th सेंचुरी में शुरू हुआ, और उस जमाने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
0: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
0: जी,
1: वो क्या खास फर्क है?
0: देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लोकासल्स वगैरह
1: जी,
0: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ।
1: हाँ।
0: तार सप्तक के, और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्ध हस्त अधिकार है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवर्ट्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं, क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति है कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी,
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी। और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेनन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी, उनको आदर मिलेगा और मैं

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया। इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जैन जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि
0: जी जी
1: जो भी कह लें उनके लिए कम हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक आपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये

0: उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की वायलिन पर बजाई राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार, श्रोताओं संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। लीजिए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति। फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 呀！
1: 嗨
0: 嗨嗨嗨！
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद

0: रफी और आशा भोसले की।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
7: शुक्रवार दिन 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक
8: देव दर्शन। सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन थू।

आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में राजकुमार फिल्म से हर्ष जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर।

0: तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म का नाम कभी कभी।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम हम ही रही प्यार की में। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हम रवि के संगीत से सजा प्रेम धवन का लिखा गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्यार का सागर फिल्म से।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में

0: ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उषा खन्ना के संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत सुनिए। ओपी नैयर के संगीत से सजा मजू सुल्तानपुरी के बोल हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित

0: ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
1: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से

0: लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
1: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
2: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिव सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के

लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे

अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है

है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी की मंगल कामनाओं के लिए हम आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आज है गुरु अर्जुन देव शहीद दिवस। सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। वे केवल सिख धर्म के पांचवें गुरु ही नहीं थे, बल्कि सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले शहीद गुरु भी थे। उनकी शहादत मानव इतिहास में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। हर वर्ष उनका शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें उनके महान बलिदान और शिक्षाओं को याद किया जाता है। इस बार पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस गुरुवार यानी आज 18 जून 2026 को मनाया जा रहा है। यह दिन मानवता के प्रति उनके समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है।

0: केसरी फिल्म का गीत आपको हमने सुनवाया। जैजी बी इसके गायक कलाकार थे। कुंवर जुनेजा ने इस गीत को लिखा था और चितरंजन भट्ट का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक, साथ ही वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: सोल्जर फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर ने इस गीत को लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा ये गीत था। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत।

0: शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
4: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया। श्रोताओं, आज है गोवा क्रांति दिवस। 18 जून गोवा के लिए महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन गोवा की आज़ादी की नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी और देश के बड़े सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का इससे खास संबंध था। उनका गोवा की आज़ादी में खास योगदान रहा। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा को आज़ाद होने में 14 साल और लगे। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराने के लिए यहां पर आक्रमण किया था। इसके बाद गोवा आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य बनने में उसे 26 साल और लगे। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और ये देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने के लिए यहां आक्रमण किया था।

0: वीर ज़ारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजूमदार की आवाजों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सलीम बिजनौरी का लिखा गीत डब्बू मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे।

आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर

0: ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक खुशखबरी
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
1: इस डे के लिए ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपना कर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है, धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

0: शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाज़ों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे। आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को नमस्कार।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दानसिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दानसिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दानसिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

0: फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।
1: मेरे हम नशीं

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव की

0: गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
1: आप सुन रहे हैं।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में

0: अच्छा,
1: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
1: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
0: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
0: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
1: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
0: पॉपुलर
1: हुआ करता था उस समय। और जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
0: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
1: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
0: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था?
1: ब्लैक एंड व्हाइट।
0: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
1: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
0: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
1: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
0: अद्भुत,
1: बाप रे। और
0: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेमचंद साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
1: बिल्कुल।
0: ऐ मेरे प्यारे वतन,

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं जाता, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
0: जी, जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना, वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
0: पढ़ाई में थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूँ मैंने, पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है,

0: लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है वो।
1: हाँ वो है
0: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, हाँ, तो एक गाना तो बन गया।
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है, है ना, ब्लैकमेल फिल्मा गाना है।
1: फिल्मों के तो खैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
0: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूँ। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज़्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज़्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहाँ से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहाँ से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहाँ पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहाँ से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूँ तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊँ, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार ये अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है तो वहां से वो कब

0: पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा,
0: कुछ होने। मैंने यार नहीं, इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे, यार अभी कहाँ जा रहे हो यार, खेलते हैं ना। मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था। हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में। वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था, और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: विजय भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है, तो पड़े रहे मतलब घर में। और सिर्फ यही सवाल कि यार

0: कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें? तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने यार ये तो अच्छा तरीका है यार। तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे, और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में, मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं, क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम
1: जी,
0: कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं मतलब?
0: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते
1: जी
0: हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं, तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो, विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम, मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपिट्री में कि सुनो तुम रेपिट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया अपने मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया, कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 18 18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या हाँ मैं करूंगा, ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कह

0: देखते होंगे टैलेंट, तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग एक साल के लिए होते हैं, एक साल के बाद दो साल का रिन्यूअल होता है, फिर दो साल के बाद तीन साल का, तो मैक्सिमम आप छह साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो एक साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 × 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर दो साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रेपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रीति साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे। जी,
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफ़ी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मज़ा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला ख़त्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज़्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ ज़रूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती वो ख्याल नहीं आते हैं।

0: यार इतना मिल गया काफ़ी है, तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
1: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं।
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मानसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में, दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मानसून वेडिंग और बारह आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है
1: जी।
0: इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहाँ से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आएँ तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में। तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा रहा काफ़ी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफ़ी समय बीत गया मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फ़ोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने। मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग कि एनी वे। तो थक गई थी काफ़ी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी चाय पियेंगे। मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में, उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आप
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया, बैठे रहे बात बात होती रही। तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीज़ें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊँ, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपक बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर

0: खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकने बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार, आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर

0: कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफ़ी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं।
0: हाँ तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही तो बजाय।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सर।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं कि बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी, उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया है? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफ़ी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूँकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कहानी इम्पोर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ना कि कहानी इम्पोर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहाँ कि कैसे बेचना है, बेचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके, लोग
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि, जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो।

0: क्लास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये अगार फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम.

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव

0: और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

की महफिल इस सभा में इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं।

0: मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको ले खा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है, और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत

आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव

डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुँचा सके।

0: जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 101 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्नाव को तरक्की की दौड़ में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तामीर के लिए ज़मीन तहवील की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब तेज़ी के साथ यहां इंडस्ट्रीज लगेंगी और नौजवानों को यहीं रोज़गार मिलेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोज़गार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के ज़रिए मुंतखब ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकर्री नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हिफाजत के बेहतरीन माहौल में मईशत को रफ्तार मिली है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में यूपी की मईशत और फी कस आमदनी में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है।
2: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे। कुल 14,000 इतनी बड़ी आबादी का राज्य एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ माली साल 2026-27 के लिए महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के बारे में मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मौसूल होने वाले तजावीज़ को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द एक्शन प्लान हुकूमत को भिजवाया जाए ताकि रवां माह के आखिर तक उनकी मंजूरी दी जा सके और काम शुरू हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मफाद आम्मा के हर मसले के तई हसास है और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। आज हम नक्सलिज़म के खात्मे और नक्सल से मुतासर इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की अहम कोशिशों पर बात करेंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस इम्तिहान में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी।

मुहर्रम के पहले दिन कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से रवायती शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता हुआ रात गए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए थे। बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के जरिए एहतमाम गंगोत्री से गंगा सागर योगा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर कल वाराणसी में एक योगा और अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो 21 जून को मनाया जाएगा। रियासती हुकूमत में आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाराणसी के हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये मुहिम 13 जून को गंगोत्री से शुरू हुई थी और 20 जून को गंगा सागर में अख्ताम पजीर होगी। वाराणसी इस सफर का एक पड़ाव था। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन की सेंचुरियों की बदौलत अफगानिस्तान को जीत के लिए 403 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर और 3 गेंदों में 232 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संग जीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि

आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं आज, हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामे और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो, तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा, और जिस गली में

तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा, ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही आप। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है और चप्पू चला माझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार।

गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ। क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना? तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया माझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, माझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया। वो शाम कुछ अजीब थी, उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ, चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर। साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था, पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदियां चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो, उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है। कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी। गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं

आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना? चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही

हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो, लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग। क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ, फील ज्यादा कर रही हूँ। हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी, मथुरा, थाईलैंड, फुकेट, दुबई, यूएसए, नायगरा फॉल, पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं, किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको

पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। टेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11

0: भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97

0: शिक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई

0: क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है

0: तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक

0: पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार, और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन

0: हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी, वो पहली छात्रा,
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपये की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो ए श्रेणी की कलाकार थी।
1: देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डर और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि

0: ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल। हमें किसी ब्रांड नेम का ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, हाँ। दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे, हाँ। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास

0: काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर

0: उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो

0: जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिख कर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना ज़रूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर ज़रूर नज़र आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने।

0: तो बनाने के लिए आप बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
1: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
0: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
1: होता है, ये तो
0: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
1: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
1: अच्छा।
0: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
1: जी। बिल्कुल,
0: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
1: बहुत जरूरी।
0: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे
0: जी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: शुक्रवार दिन 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक

0: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन थू।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
2: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
3: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबल

0: टी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
1: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
0: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, कॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं मैम, पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, तो हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी है। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मतलब
0: वो
1: आपको पता है ये पहलगाम
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि

0: शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से, क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 60-62 से ही।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था, पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
1: हाँ
0: लगती थी ये, उसकी ट्रेनिंग होती थी।
1: अच्छा।
0: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए, तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की, वाल वाले रेडियो।
1: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
0: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
1: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
0: हाँ रिपेयरिंग करता था, और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
1: अच्छा क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने, वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है।
0: हाँ 5 वाल 3 वाल 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
1: जी जी। तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
0: नहीं अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं, अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
1: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
0: सुनना तो नहीं रहा, तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन है,
1: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
0: और मोबाइल
1: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
0: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से उधर तक नहीं लगता था
1: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
0: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाटी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था, और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
1: बिल्कुल
0: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
1: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
2: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश हुई।
1: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
2: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
1: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
2: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
1: क्या बात है,
2: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
2: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
1: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
2: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
1: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
2: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलनी थी।
1: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: मक्खन घी दही सब कुछ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
2: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
2: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, तो हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
2: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
2: देखी है जी मैंने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और कल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो कश्मीर का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम टीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता
1: है। हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है, और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद है और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा।
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जो दाना डालते रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है ना?
1: मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो। बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है।
0: हाँ।
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉर्पोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारी का बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले ये आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और अब वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और जैसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था,
1: दादी लोग हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM 103.7 पर आप कनेक्ट है विविध भारती कानपुर केंद्र के साथ। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम का, खरीफ प्रोग्राम की शुरुआत। उससे पहले आइए आपको बता देते हैं अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। गुरुवार का दिन है आज, तो आज संध्या 5:45 से लेकर हाजिर होंगे आपकी सेहत की जानकारियों से भरा कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। और आज इस कार्यक्रम में खास बातचीत डॉक्टर प्रवीण कुमार कटियार से दीपशिखा गुप्ता की, विषय है एनीमिया। शाम 6 बजे का वक्त होगा विविधा का, आज गूंजेगी लोक गीतों की धुन लोक रंग के संग। शाम 6:30 पर वक्त रहेगा गाने तराने का, और आज होंगे गाने तराने पर खास वो गाने जो रागों पर आधारित हैं। और कौन से ये गीत होंगे सुनने के लिए बस कनेक्ट रहेगा हमारे साथ शाम 6:30 पर गाने तराने के संग। जय माला अपने सुनिश्चित समय पर शाम 7 बजे और 7:45 पर लेकर आएंगे आपके लिए इंद्रधनुष के तहत इनसे मिलिए कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विग मेकर अनवर पावस्कर से की गई बातचीत। जी हाँ, रात्रि 8 बजे बेसब्री से इंतज़ार होते हैं इस वक्त का, जब लेकर हाजिर होते हैं हवा महल। और आज के इस कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखक राजकुमार, निर्देशक गोपाल सक्सेना। आपकी ईमेल्स और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात्रि 9 बजे, और छाया गीत का वक्त होगा रात्रि 10 बजे का। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। तो ये थी अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुनने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ जहाँ भी हैं आप, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू भी। जी हाँ, 103.7 की फ्रिक्वेंसी पर आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ। तो ढलता हुआ एक और दिन, दिन भर की मसरूफियत के बाद शाम की आगोश में कह रहे कि वक्त है आप थोड़ा सा ठहरने का। जब दिन भर की दौड़ भाग को धीरे धीरे विराम देने का वक्त आ चुका है, ये वो सुकून भरे पल हैं खुद को आराम देने के लिए जो कर रहे हैं बेसब्री से आपका इंतज़ार। तो चलते हैं अपने आशियाने की ओर, अपनों के पास, और इस सुकून भरे सफ़र में खूबसूरत पलों के साथ हम हैं आपके साथ। तो चलिए बनाते हैं आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम के साथ इस पल को और भी खास। और आज के इस प्रोग्राम में सीमा है आपके साथ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, खूबसूरत सुबह हो या शामें हो, ये तो है सिर्फ हमसे ही। जब हमारी सेहत, जी हाँ, सही होगी तो सब कुछ सही होगा। सेहत जो सिर्फ हमारा निजी मामला नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे शहर के भविष्य का आईना भी है। सेहत एक ऐसी बात है दोस्तों, जो हर युवा और माता पिता के लिए एक वेकअप कॉल है। शहर के हृदय रोग संस्थान के अध्ययन में सामने आई युवाओं के फिजिकल फिटनेस के गिरते ग्राफ की बात है कि दौड़ना भागना तो दूर, रोज़मर्रा के छोटे छोटे शारीरिक काम करने में युवाओं की जो सांसें हैं वो अब फूल रही हैं। दिक्कत का कारण बदलती जो है उनके जीवन की शैली है। और ये बात कही है वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञ ने। उन्होंने बताया है कि दफ्तर और घर पर लंबे समय तक बैठे रहना, पैदल चलने की आदत का कम होना, नियमित व्यायाम से दूरी, योग से दूरी, अनहेल्दी खान पान और नियमित नींद का पूरा ना होना इसके लक्षण है। तो खुद को फिट रखने के लिए क्या

करना है आपको, हेल्दी हैबिट अपनाना है, रोज़मर्रा की आदतों में ज़रूर शामिल करना है। कम से कम 30 मिनट का वॉक आप ज़रूर कीजिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, 8 घंटे की भरपूर नींद ज़रूर लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, बस भले ही कुछ देर के लिए ही सही। और सबसे ज़रूरी बात कि अपने स्क्रीन टाइम को भी आपको कम करना है, तो आज से ही अपनी सेहत को बनाइए प्रायोरिटी, हेल्दी रहना है ज़रूरी लाइफ के लिए, अपनों के लिए।

तो हम तो यही कहेंगे कि दिल लगाकर आप कोई भी काम कीजिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और ऐसी ही ख़ास बात अब हम यहाँ आपसे करने जा रहे हैं कि शहर की हुनरमंद बेटी की हुनर की गूंज पहुँची है सात समंदर पार। जी, कोरे कागज़ पर सधे संतुलित और सुंदर हस्तलिपि से चर्चाओं में है उमरी नरवल की दसवीं की छात्रा शिवानी। और आपको बताना चाहिए कि उनके लिए ब्रिटेन से आए हैं, जी हाँ, विशेष उपहार भेजी गई है नॉर्थहैम्पटन शायर के भारतीय मूल के चिकित्सक की ओर से कैलीग्राफी की पुस्तकें और विशेष पेन, जिसे पाकर शिवानी बेहद खुश हैं। और ये मिला है उनको उनकी सुंदर लिखावट के लिए, जिसे देखकर लगता है एक लिखने के बजाय जैसे टाइप किया गया हो, इतनी सुंदर लिखावट है उनकी। इसी विशेष प्रतिभा को देखकर कुछ महापुरुषों ने सम्मानित भी किया गया था और अब वो ये उपहार पाकर बेहद खुश भी हैं। और जब शहर की गूंज पहुंची है सात समंदर पार, तो बेहद है, शहर की बात है, शहर से जुड़ी हुई है, तो खुशी हमें भी है कि हमारी शहर की बेटी ने जो है इतना मुकाम हासिल किया है और उन्होंने ये प्रतिभा जो है और निखारी है। तो हमारी तरफ से उनको ढेरों बधाई। फिलहाल गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से। शाम के 5:16 का वक्त हो रहा है पूरा, तो कुछ और ख़ास खबरों के साथ हम बने रहने वाले हैं आपके साथ में। कहीं मत जाइए, सुमधुर गीतों को लेकर भी बने हुए हैं और अब आपके लिए जी हाँ प्ले करें एक और बेहद ही खूबसूरत सा सुरीला गाना आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम पर।

और अब आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए होनहार बच्चों का चयन किया जा रहा है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है awards.gov.in। जी हाँ, इस पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। तो इससे पहले जो भी हमारे होनहार हैं वो अपने इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये भी अपडेट करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय परीक्षा के पद 2285 से बढ़ाकर 2516 कर दिए हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 25 जून तथा समायोजन संशोधन की अंतिम तिथि 2 जुलाई कर दी गई है। तो फिलहाल ये खास अपडेट आपके लिए थी आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में। और अभी प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक और बेहद ही खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम में आगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ में, साथ ही शहर से जुड़ी कुछ और ख़ास अपडेट आज के दिन की बात के साथ लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, बस बने रहिए आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम में 103.7 FM आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ।

0: जी हाँ, फिलहाल हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बने रहने वाले हैं आपके साथ में आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और बातों और गीतों के साथ जी हाँ हम हाजिर होंगे। बस अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

शाम के 5:35 का वक्त यहाँ हो रहा है पूरा, और इस वक्त आप कनेक्ट हैं जी हाँ आकाशवाणी के FM 103.7 के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी का कानपुर केंद्र आपकी दोस्त सीमा के साथ। फिलहाल इस वक्त जो फीवर चढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं कि फुटबॉल का फीवर हम सभी के जहन में चढ़ा हुआ है, तो चलिए कुछ खेल अपडेट के बारे में यहाँ बात करेंगे और ये जुड़ी हुई है फुटबॉल से ही। और इस बारे में हम कल के मैच के बारे में यहाँ बात करेंगे कि कल का मैच फुटबॉल फैंस के लिए बड़ा ख़ास और रोमांचक रहा। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी ने इतिहास जहाँ कल रच दिया अपने करियर के, वर्ल्ड कप के आखिरी वर्ल्ड कप से पहले ही मैच में 2 उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल कर ली हैं। वे विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अल्जीरिया के जिहां खिलाफ शानदार हैट्रिक जड़कर अर्जेंटीना को 3-0 से धमाकेदार जीत दिलाई। वहीं बुधवार को मैदान पर उतरते ही छठा विश्व कप खेलने वाले वे पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और अगर आज के मुकाबले की बात करें तो 9:30 पर चेकिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने। और इसी के साथ ही हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं, जी बिल्कुल, कल के यानी 17 जून को महिला क्रिकेट ने क्रिकेट के मैदान में बेहद रोमांचक ये मैच खेला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए इस वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज हासिल की। हमारी भारतीय बेटियां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अर्धशतक से किया धमाका। तो ये खास अपडेट खेल से जुड़ी ही आपके लिए थी। फिलहाल इस वक्त जी हाँ 5:38 का वक्त हो रहा है पूरा, बढ़ते हुए वक्त के साथ हम भी बढ़ेंगे आगे और बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये अगला गीत।

लेकिन हम आपके साथ, जी हाँ, जरूर शेयर करना चाहेंगे ये बात मौसम से जुड़ी हुई। जब प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर होने को है पूरा, उससे पहले खास बात मौसम से जुड़ी हुई आपके लिए, जबकि आज जून की 18 तारीख है, तो मानसून की आहट के बीच उमस भरी गर्मी ने सबका चैन छीन लिया है और ये उमस भरी गर्मी 21 जून तक, जी हाँ, रहने वाली है। राहत के आसार फिलहाल नहीं मिलने वाले हैं। 20 और 21 जून के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। और इस बीच आपको क्या करना है कि जो लू है उसे बच के रहना है। और अगर आज के तापमान की अधिकतम हम बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। फिलहाल इसी के साथ ही आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम का समय यहीं हो रहा है पूरा। कुछ ही देर में लेकर हाजिर होंगे आपके लिए स्वास्थ्य चेतना प्रोग्राम, होंगी सेहत से जुड़ी खास बातें, तो बस बने रहिए आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ 103.7 FM पर।

0: और अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चेतना प्रोग्राम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। सभी सुनने वालों को दीप शिखा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं, और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को, जो कि IMA कानपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद दीपशिखा जी हमें आमंत्रित करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि एक ऐसे विषय पर बातचीत की जाए जिसका सामना भारत में रहने वाले लोगों को अक्सर करना पड़ता है, और वो विषय है खून की कमी यानी कि एनीमिया। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सरल भाषा में आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं कि एनीमिया वास्तव में होता क्या है।
2: एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं, या ऐसे समझ लें कॉमन लैंग्वेज में कि खून की कमी। अब खून में क्या आता है, एनीमिया पर्टिकुलर RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी को फोकस करता है। और जो कॉमन एज ग्रुप है, और एनीमिया कब बोलेंगे ये एक विषय आता है कि कौन से ऐसे मानक हैं जब हम बोलें, तो फीमेल्स में 12 ग्राम पर DL से जब कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी तब वो एनीमिया के श्रेणी में आएगा। और ये इसी तरीके से पुरुष में 13 ग्राम पर DL से जब नीचे के वैल्यू होगी तब एनीमिया के श्रेणी में आएगा। और इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो माइल्ड वाला 11.9 तक वाले जो हीमोग्लोबिन वाले लेवल वो माइल्ड में आ गए, 8 से 10.9 वाले वो मॉडरेट में आ गए, और जिनका 8 ग्राम पर DL से हीमोग्लोबिन कम है वो सीवियर एनीमिया में आ गए। तो 3 कैटेगरी में एनीमिया बटा होता है। सबसे फीमेल्स में बहुत अधिक पाया जाता है, ग्लोबल पॉपुलेशन का 30% फीमेल्स जो कि 15 से 49 वर्ष के आयु ग्रुप में हैं, 30% वो पॉपुलेशन एनीमिया से ग्रसित है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फीमेल्स में एनीमिया स्पेशली बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि एनीमिया होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं।
2: अब जो एनीमिया के कारण हैं वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल भी हैं। जो एनीमिया देखा जाता है रूटीन में डेवलपिंग कंट्रीज में वो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, बच्चों में और फीमेल्स में, इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो अब 3 तरीके से हो सकता है कि RBC का प्रोडक्शन कम हो गया, एक तो कारण ये हो गया जितना बनना चाहिए उससे कम बन रहा, दूसरा जो RBC बनी हुई बन तो ठीक रही हैं लेकिन उसी रेशियो में वो टूटती चली जा रही, और तीसरा हो गया कि ब्लड लॉस हो गया। तो इन 3 पैटर्न पे एनीमिया का डिवीजन किया गया है, मतलब इनको विभाजित किया गया। तो जो रेड सेल कम बनने वाले कारण हैं उन पे मैं आऊँगा। इसमें होता है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, तो ये 3 तरीके का एनीमिया हो सकता है। इसमें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, हम ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें आयरन ही नहीं है, आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, हीम की सिंथेसिस रुक जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। इसी तरीके से vitamin B12 डिफिशेंसी एनीमिया, जो कि vitamin B12 कोवालामिन विटामिन होती है उसकी डिफिशेंसी से होता है, इसमें DNA सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है। इसी तरीके से फोलेट vitamin B9 डिफिशेंसी एनीमिया होता है, ये एनीमिया प्रेगनेंसी और मेल जॉब्सन सिंड्रोम और अल्कोहलिज्म में पाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल वाले एनीमिया हो गए। इसी तरीके से बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया कि बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा, तो एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कैंसर ये सब आते हैं। फिर एनीमिया आप क्रोनिक डिजीज, तो क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी हो गई, TB हो गई, HIV हो गई, रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गई, इन डिजीज में भी क्या होता है कि खून का बनना कम हो जाता है। इसी तरीके से किडनी डिजीज हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज बड़े लंबे समय से पड़ी है, तो इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो नहीं बनता है। फिर इंडोक्राइन काजेज हैं, तो इंडोक्राइन काजेज में आ गया आपका हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोपिट्यूटरीज्म हो गया, हाइपोगोनाडिज्म हो गया, ये सब वो कारण हैं जिनकी वजह से रेड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं कि इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, की खून की जो कणिकाएँ हैं वो टूट ज़्यादा रही हैं, बन तो ठीक रही हैं लेकिन उससे उसमें अधिक रेशियो में वो टूट रही हैं। तो ऐसी बीमारियां हो गई, सिकल सेल डिजीज हो गई, थैलेसीमिया हो गई, glucose 6-phosphate डिफिशेंसी हो गई, मलेरिया हो गया, मलेरिया में आपने देखा होगा खून कम हो जाता है, ऐसे टाइफाइड में भी खून कम होने का चांस रहता है। फिर तीसरा जो मेन कारण है ब्लड लॉस, तो ब्लड

0: क्लास कैसे होगा, चोट लग गई, इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, अब आपका डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, या जीआई डिसऑर्डर होगा, कई कई लोगों को क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये तीन प्रमुख जो कारण है इनकी वजह से एनीमिया होता है।
1: ये जानने के बाद कि एनीमिया के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप है जो कि एनीमिया के लिए ज्यादा प्रोन होता है, यानी कि जिसमें एनीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है।
0: 15 से 49 वर्ष की फीमेल्स
1: जी,
0: उनमें एनीमिया सबसे अधिक पाया जा रहा है, ग्लोबली पाया जाता है। फिर हैं बच्चे, और इनका मेन कारण है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये एनीमिया का डिसऑर्डर होता है।
1: अभी न्यूट्रिशनल एनीमिया को कैसे हम टैकल करें, कैसे उससे समाधान करें, इस पे बातें अभी करेंगे आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे सभी श्रोताओं को सुनवा दें।
0: जगजीत सिंह का एक गजल है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।

0: बाद एक बार फिर से लौटा है आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज चर्चा हो रही है एनीमिया विषय पर, जिसे हम कर रहे हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी से। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशनल एनीमिया होने पर किन बातों का ध्यान रखकर इसे कंट्रोल में किया जा सकता है।
1: सर, प्रथम तो जिस भी व्यक्ति को खून की कमी आ रही है, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनवानी जरूरी है चिकित्सक से मिलकर के, उसको किस प्रकार का एनीमिया है, उसका कारण क्या है
0: जी।
1: तो आप किसी में आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है तो वो आयरन के सप्लीमेंट से ठीक होगा, आयरन रिच फूड लेने से ठीक होगा। जिसमें B12 डिफिशेंसी है तो वो B12 का सप्लीमेंट करने से होगा। तो पहले कारण जानना बहुत जरूरी है। और किसी भी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो न्यूट्रिशन डिफिशेंसी की वजह से होते हैं, तो इनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी राय ये है कि सभी लोग, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हों, चाहे मिडिल क्लास हों, चाहे अपर मिडिल क्लास, सभी लोग अपने बच्चों और अपने घर की महिलाओं के न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ईजिली ठीक कर सकते हैं। जो चीज़, जो बीमारी हो गई वो अलग विषय है, लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी हैं, हमें न्यूट्रिशन ही अच्छा देना है और ठीक हो जाएगा
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सभी को अपने न्यूट्रिशनल जो पहलू है उस पर ध्यान देना चाहिए न्यूट्रिशनल एनीमिया से बचने के लिए। ऐसे में हम चाहेंगे कि खान पान से संबंधी कुछ सुझाव आप हमारे लिसनर्स को दें, जिनको अपनाकर वो एनीमिया से खुद को दूर रख सकते हैं।
1: सर्वप्रथम तो पोषण के, आहार के संबंध में तो व्यक्ति को अपने वजन और उसका जो बीमारी का स्टेटस है या ग्रोथ का स्टेटस है, उसके हिसाब से एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाना अत्यंत आवश्यक है। किसी डाइटिशियन से मिलकर वो डाइट चार्ट बनाएं, क्योंकि होता क्या है कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सब चीज़ें उचित मात्रा में होती हैं। नॉर्मली हम लोग भोजन लेते हैं तो कोई चीज़ अधिक हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। जो पोषण विज्ञान ये कहता है कि आप संतुलित आहार लें, कोई चीज़ ना ज़्यादा हो, कोई चीज़ ना कम हो, तो आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, रक्ताल्पता यूं तो स्वयं में भी एक बीमारी है, लेकिन क्या ये किन्हीं और बीमारियों का कारण भी बन सकती है?
1: जरूर बन सकती है, दूसरी बीमारियों का कारण बन सकती है, क्योंकि वीकनेस होती है, आप काम नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन आएगा, एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर बढ़ने का चांस है, दूसरा क्या है, कार्डियक ओवरलोड होने का चांस है, क्योंकि आप में खून उतना है नहीं। अच्छा, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन कैरी होती पूरी बॉडी में, कम हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहे, तो ऊतक जो टिश्यूज़ हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत सी बीमारियाँ साइड में जुड़ी हुई हैं, जिस लेवल का हीमोग्लोबिन है उस लेवल के हिसाब से।
0: डॉक्टर साहब, आजकल हमारे देश में भी एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है, और एनीमिया से दूर रखने के लिए लोगों को बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चलते चलते हम चाहेंगे कि एनीमिया से फाइट करने के लिए हमारे सभी लिसनर्स को कुछ संदेश देते चलें आप।
1: मेरा संदेश यही है कि जो, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेजर पार्ट है न्यूट्रिशनल एनीमिया का, और न्यूट्रिशनल एनीमिया ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप न्यूट्रिशन अच्छा करोगे, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर लोगे, तो वो ठीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, आप पुनः हेल्दी हो जाओगे। तो सबसे प्रथम क्या है कि आप अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर बच्चे और महिलाएँ, क्योंकि इनमें पूरे वर्ल्ड में कम एनीमिया होने का चांस अधिक पाया गया है, तो ये लोग ध्यान दें। दूसरा, जो नियमित इंटरवल पे, 6 महीने पे, 1 साल पे अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। स्वास्थ्य परीक्षण में हो गया, एक डॉक्टर ने परीक्षण किया, दूसरे खून की जांचें अवश्य कराएं, जिससे आपको ये पता लग सके कि हम किस फेज में बीमार हुए थे और हमें क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है ठीक रहने के लिए
0: जी। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातें आज एनीमिया के विषय में आपने हमारे सभी लिसनर्स से साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू दीपशिखा जी, थैंक यू आकाशवाणी कानपुर फॉर इनवाइटिंग मी।
0: कार्यक्रम का अगला अंक लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना।
2: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM, और अब से बस कुछ ही देर में लेकर हाजिर होते हैं विविधा के अंतर्गत लोक रंग कार्यक्रम। जाइएगा नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं कुछ ही।

0: देर में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM। लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत शारदा सिन्हा के गाए इस लोकगीत के साथ।

शारदा सिन्हा और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये विवाह गीत सुना और अब अगली आवाज़ आप तक पहुंच रही है मैथिली ठाकुर और साथियों की। बेहद ही खूबसूरत अवधि अंचल का ये सुमधुर लोकगीत सुनवाते हैं आपको।

दोस्तों, लोक संगीत सिर्फ गीत नहीं, ये हमारी माटी की खुशबू है। ये वो संगीत है जिसे सीखने के लिए किसी बड़े विद्यालय की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये माँ की लोरियों से, खेतों में काम करते किसानों के गीतों से और दादी नानी की कहानियों से सीधे हमारे दिलों में उतरे हैं, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। जब राजस्थान के रेगिस्तान में जी हाँ ऐसे गीत आते हैं, या फिर ब्रज की बोलियों का कोई लोकगीत आता है, या अवधि में आपने जो ये लोकगीत सुना, तो बस दिल से एक ही आवाज़ आती है। जो दिल से निकलता संगीत है, बखूबी स्वतः ही बन जाता है, जो हमारे जन्म के साथ स्वतः उपजा हुआ है और कई सारे अवसरों पर गाए जाते हैं। यही हमारे लोक मिट्टी, हमारे लोकगीत, हमारी धरोहर है, हमारी अपनी संस्कृति है। तो ऐसा ही लोकगीत आपके लिए हम यहाँ पर सुनवा रहे हैं। सीमा मिश्रा की ये आवाज़ है और ये राजस्थानी लोकगीत है, आइए सुनते हैं।

आज आपको सुनाने जा रही हूँ अवध की एक बहुत नायाब चीज। बच्चे के जन्म में लखनऊ में हमारी जो मिरासने थे वो जो मुबारकबादी गाया करती थी, आज आपके सामने वो पेश कर रही हूँ।

0: और मालिनी अवस्थी के गाए सी लोकगीत के साथ ही आज की विविधा यानी लोक रंग का ही हो रहा है समापन। गाने तराने के संग हाजिर होंगे हम बस कुछ ही देर में। बने रहिए आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ 103.7 FM पर।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कानपुर केंद्र 103.7 FM। गाने तराने प्रोग्राम की शुरुआत

बात करें ये प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले आपको ये सूचना हम दे देते हैं, और ये सूचना है खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका मिश्रा पत्नी प्रवीण मिश्रा निवासी ग्राम मलवा कांघी फतेहपुर से दिनांक 15 फरवरी 2022 से कहीं लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 35 वर्ष, कद 150 सेंटीमीटर, एक गहरा बदन और स्वस्थ शरीर है, ये हिंदी जानती हैं। इनके मिलने की संभावना प्रयागराज और कानपुर के आसपास है। इनके मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें, क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर। तो ये थी खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना, और ये सूचना अब यहीं समाप्त हुई। चलिए हाजिर होते हैं हम गाने तरारे के संग।

शाम के 6:30 का वक्त हो रहा है पूरा और इस वक्त आप कनेक्ट हैं आकाशवाणी के कानपुर केंद्र के साथ। जी हाँ, दिन भर की तपिश के बाद जब ये शाम आई है तो दिल करता है कि थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, भले ही एक कप चाय के साथ सही या किसी दुकान की कुल्हड़ वाली के चाय के साथ ही सही, कुछ मखमली सुर घुलेंगे अब यहाँ पर। तो चलिए तपते हुए शहर को थोड़ा सा ठंडक का एहसास कराते हैं सुरों की फुहार के साथ। और आज की शाम चंद ऐसे गीत लेकर आए हैं हम आपके लिए जो आधारित हैं रागों पर, और ये गीत हिंदी सीने से निकलकर जब लोगों की जुबान पर आए तो उनके जहन में अलग ही एक मुकाम बना लिया। तो शाम के सबसे पहले और सबसे खूबसूरत राग की हम अगर बात करें, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं गाने तराने के साथ में, तो राग यमन की हम बात करेंगे यहाँ पे। ये रचना जो आप सुनने जा रहे हैं वो पाकीज़ा फिल्म से, और इस राग की अगर हम बात करें तो संगीतज्ञों का कहना रहा है कि इस राग के स्वर तपते मौसम में ओस की बूंदों का काम करते हैं, बात प्रकृति के मौसम की हो या दिल के मौसम की हो। तो चलिए सुनते हैं फिलहाल राग यमन पर ये रचना, गुलाम मोहम्मद की संगीत रचना में मधुर स्वर है लता मंगेशकर जी का, और यमन के स्वर में जो कशिश है वो सीधा रूह को छूती है। तो सुनते हैं कि ये गीत आखिर है कौन सा, पाकीज़ा फिल्म से ये गीत पहुँचा है।

तो ये था यमन राग पर आधारित गीत पाकीज़ा फिल्म से, जिसे अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शाम जब थोड़ी और ढल चुकी है, जब वक्त है थोड़ा सा और ठहरने का, तो बात करेंगे उस राग की जो मिलन, प्रेम और इंतज़ार की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेहद सुमधुर और लोकप्रिय राग, राग बागेश्री। हिंदी सिने संगीतकारों ने इस राग पर कई कालजयी और सदाबहार गीत बनाए। सुनते हैं ये गीत राग बागेश्री पर रचा हुआ, बेहद ही खूबसूरत सा ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के मधुर स्वरों में, और जिसे ये संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। तो चलिए मिलकर सुनते हैं इस गीत को जो राग बागेश्वरी पर आधारित है।

गाने तराने आप सुन रहे हैं 103.7 FM पर आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से। और आज के इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं रागों पर आधारित कुछ हिंदी गीत, जिनका हिंदी सिने संगीत में संगीत की मधुरता को बनाए रखने में बड़ा योगदान रहा। शास्त्रीय रागों का महत्व भी दोस्तों ऐसा ही है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि गीतों में से अगर रागों को निकाल दिया जाए तो केवल शोर बनकर रह जाएगा। ये महत्व है संगीत में रागों का। फिलहाल अगला गीत किस राग पर है बताते हैं आपको। और अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप इसे दक्षिण भारतीय संगीत कहें या कर्नाटक संगीत भी कह सकते हैं, से हिंदुस्तानी हिंदी संगीत का हिस्सा बना राग चारुकेशी। और जब हिंदी गीतों में आया तो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया इसके स्वरों ने, जो अपनी करुणा भक्ति और रोमांटिक भाव के लिए जाना जाता है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको राग चारुकेशी पर आधारित ये मधुर गीत। गीत संगीत किनका है बताएंगे आपको इस गीत को सुनवाने के बाद। फिलहाल अभी आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत जो राग चारुकेशी पर आधारित है।

कभी आपने सुनी राग चारुकेशी पर आधारित ये रचना, सुरों में ढाला था जसपाल और आरती मुखर्जी ने, गीत के बोल लिखे रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का था। और अब हम बात करेंगे अगले राग की। सच तो है दोस्तों कि इन खूबसूरत रागों और इन पर आधारित गानों के साथ और हमारा आपका साथ इस शाम को और भी यादगार बना रहा है। शाम के इन सुरमई

पलों में पहाड़ों की बात करेंगे। जी हाँ, पहाड़ों की बात करें तो इसके नाम के अनुरूप सुखद एहसास कराता है राग पहाड़ी, जो अपनी सादगी और मधुरता को लेकर बेहद ही लोकप्रिय है। पहाड़ों जैसे सुकून भरे पलों वाला एहसास लिए हिंदी सिनेमा के महान संगीतकारों एस डी बर्मन साहब, नौशाद साहब, ओपी नैयर साहब और रवि ने इस राग को बखूबी अपने संगीत में इस्तेमाल किया। तो आइए ले चलते हैं आपको इन्हीं खूबसूरत वादियों में इस गीत के साथ, जो लोक संगीत के भी बेहद करीब है, जिनमें पहाड़ों के झरनों की खनक है और है ताजी हवा का एहसास। और ये गीत है आपकी कसम फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़। लता जी की भी आवाज है, संगीतकार एस डी बर्मन।

और गाने तराने के इस महफिल में एक और बेहद खूबसूरत मखमली और सीधे दिल को छू लेने वाला राग राग पीलू, कोमल चंचल और बेहद भावुक प्रकृति का राग। लोक संगीत की सौंधी खुशबू लिए ये राग जब शाम को इसके सुर बजते हैं तो दिल में जगता है एक सुरीला एहसास। सुनवाते हैं आपको राग पीलू पर आधारित ये संगीत रचना फिल्म जब जब फूल खिले से सुमधुर स्वर रफी जी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और गीत कौन सा है राग पीलू पर आधारित पहुंच रहा है आप तक ये

और अब इस खूबसूरत सुरीली शाम को मुकम्मल मोड़ देने का वक्त आ चुका है। थमेगी गाने तराने की रफ्तार, उम्मीद है रागों की मखमली फुहार ने आपके दिलो दिमाग पर कुछ तो ताजगी का एहसास कराया होगा। तो फिर होगी कुछ और अनकहे अनसुने किस्सों, यादों सुनहरी के साथ आपसे मुलाकात। अभी के लिए फिलहाल सीमा को इजाजत दीजिए, गाने तराने से मिलेंगे रात्रि 9 बजे आपकी फरमाइश प्रोग्राम के साथ। नमस्कार, और आपसे बस कुछ ही देर में आपको कनेक्ट करेंगे हमारे मुंबई केंद्र के साथ।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Koi farak nahi albatta.

आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से ये गाना, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गाइड फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: संगीत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आएंगे।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म से ये गाना, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। शक्ति फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुन रहे हैं आप ये गाना आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: पहले।
1: नहीं,
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरती अच्छे खूबसूरत बाल नहीं हैं, तो आज के ज़माने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। मगर मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहाँ तक बात है, मैं हूँ रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के ज़माने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी के यहाँ मसाला लगा दो उसके मुँह पर तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आँख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा, एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा वहाँ से, कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ।
0: 33 साल
1: मेरी उम्र है 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख
0: रहा हूँ। हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर भी, आपकी जो सच्ची लगन थी वो आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य। बहुत पुराने एक्टर थे, बंगाल के थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूछ लेकर पहुंच गया था, तो मेरी उम्र उस समय बड़ी छोटी सी थी, और वो देखते रह गए, बोले बेटे किसने बनाई है? बोला मैंने बनाई है। तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लगा के दिखाओ। तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नज़दीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नज़दीक गया था। और जब मैंने मुझ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी, मगर उनको मालूम पड़ गई थी। पर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं, ताकि उनको मालूम है बच्चा है, हिम्मत हार जाएगा। तो अभी बैठा जाता जिसने कहा बहुत अच्छी लगाई आपने मुझ, और बहुत अच्छी बनाई आपने। जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला।
0: मतलब उन्होंने एनकरेज किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है नहीं हो, मगर उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था, वो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, समझ लीजिए। आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
0: चलिए, बहुत।
1: अगर किसी की विग नहीं बनी है तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूँ, किसी की दाढ़ी नहीं बनी है तो किसी की मूंछ बना दिया हूँ, अगर और कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया उनका।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप, या मूंछ, दाढ़ी, जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: वैसे नायलॉन की भी बनती है, मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। असली बालों से जैसे विग बनती है या दाढ़ी मूंछ बनती है, उसकी बात ही कुछ और आती, लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
0: तो कहाँ से आपको वो नेचुरल बाल?
1: में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की ये खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको। वहाँ पर ऐसी श्रद्धा है लोगों के दिलों में कि वो अपने सारे बाल, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां अपने बाल पूरे वहाँ उतार के आ जाती है, फुल बॉल्ड होके, फुल टकली होके वहाँ से आती है, और वो सारे

0: बाल बहुत बड़ा कारोबार ये बालों का, ये सारे बाल वहाँ से एक फैक्ट्री में जाता है, साफ होता है, साइज वाइज लगता है, और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे भी मिलता है उन लोगों को।
1: अच्छा, तो आप कैसे विग बनाते हैं?
0: एक्चुअली क्या होता है, जैसे फिल्मों की अगर कोई किसी की विग बननी है तो डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है वो हमको एक फोटोग्राफ बताएगा।
1: अच्छा,
0: कि भाई इस आदमी को हमको इस की तरह बनाना है।
1: अच्छा, ये जो बाल आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी होते हैं, आप भी उन्हीं लोगों से बाल लेते हैं जो असली होते हैं, तो ये क्या बहुत महंगा है?
0: अभी तक तो नहीं था, मगर अभी ये 2-3 साल से इतने महंगा हो गया है कि एक्सपोर्ट चालू हो गया बाहर
1: जी,
0: तो उसके रेट्स बढ़ गए सब अभी।
1: आम तौर पे अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहे, अच्छा सा विग लगाना चाहे, तो क्या कीमत पड़ेगी एक विग की अपने इच्छा अनुसार जो आपको ऑर्डर करें?
0: अगर आप बनाना चाहें तो 5,000 की बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहें तो 50,000 की बनती है।
1: अच्छा,
0: आपके ऊपर डिपेंड है, लोग कहते हैं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा।
1: तो उसमें क्या क्वालिटी में क्या फर्क रहता है?
0: क्वालिटी में जैसे बालों की क्वालिटी अलग अलग आती है, किसी के बाल बहुत ही सिल्की मुलायम होते हैं जो काफी महंगे मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: किसी के बाल बहुत ही लंबे होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं जल्दी मिलते नहीं वो भी महंगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस भी बढ़ती कम होती जाएगी।
1: पर अगर कुछ नहीं होते, आप विग ऐसा बनाते हैं जिसमें कर्ली बालों की जरूरत होती, तो क्या करते हैं
0: उसको? हम लोग मशीन से करते हैं ना, केमिकल से वगैरह पम्पिंग वगैरह करते हैं, उससे कर्ली हो जाते हैं।
1: उससे कर्ली हो,
0: हाँ, अगर कर्ली बाल है तो उसको स्ट्रेट हो जाते हैं। वो तो बेचारे मजबूर बाल होते हैं, उनको आप जैसे शेप दो जो बोलो बेचारे मान लेते हैं।
1: अच्छा, एक शंका मेरे मन में ये आ रही है कि आप विग तो लगा लिया, फिल्म में कई टेक होते होंगे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि विग किसी का काम करते करते गिर गया हो, निकल गया, उसको फिक्स कैसे करते हैं?
0: वो क्या, जो हम लोग जिस मटेरियल से विग को फिक्स करते हैं वो एक गम आता है, वो हमारे इंडिया में बनता है, फिर एक फॉरेन का गम आता है, उसको हम लोग लगा के जब फिक्स करते हैं तो आप उसको ऐसा पकड़ के उठा सकते हैं, इतनी उसमें ग्रिप होती है।
1: अच्छा, तो आम आदमी जिसको रोज अगर विग लगानी हो, आपसे उसने विग ली हो, तो उसको रोज ये अपने गम लगाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा?
0: यहाँ जो रोज पर्सनल यूज जो करते हैं उसमें तो एक टेप आता है जो डबल साइड टेप होता है, उससे आप लगा सकते हैं, या तो कैप की तरह पहन सकते हैं, या क्लिप लगा सकते हैं। बहुत सी चीजें आज के जमाने में इतना इंप्रूवमेंट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जैसा आप बोलते हैं विग निकल जाएगा, मैं तो बोलता हूँ लगने के बाद आप हाथ से बड़े खींचे बाल निकलेगा ना, वो
1: नहीं निकलेगा,
0: नहीं इसकी गारंटी इस बात से।
1: अच्छा, जैसे आपने पुरुषों के विग की बात की, महिलाएं अगर बहुत लंबे बाल चाहें तो ऐसा भी विग बनता है?
0: हाँ, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। जितने लंबे हैं, जितनी आपकी हाइट नहीं है,
1: हाँ,
0: उतने लंबे विग बन सकते हैं, बालों के भी और नायलॉन के भी, सिंथेटिक के भी।
1: अच्छा, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो आम आदमी पर्सनल यूज के लिए विग इस्तेमाल करता है?
0: सावधानी कुछ भी नहीं, ये कोई इसका तो आइटम नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कि यहाँ की वायर वहाँ लग जाएगी तो आईसी उड़ जाएगा, जल जाएगा, ऐसा बस पेन लिए, कंघी कर लिए, तेल लगा लिए, जैसे अपने असली वालों में जो होता है सब वही करना है, इसमें कोई ऐसा सावधानी वाली बात नहीं है।
1: कोई सावधानी की बात जरूरत नहीं, बस आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का।
0: लंबे बाल अगर है तो पॉकेट भी लंबी रखनी चाहिए आपको, ये बात है, बालों की जितनी लंबाई होगी उसकी पॉकेट की लंबाई बढ़ जाएगी।
1: आप बेसिकली विग मेकर हैं या मेकअप मैन हैं?
0: बेसिकली तो प्रोफेशनल के हिसाब से विग मेकर हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मेकअप मैन हूँ, मगर इसके अलावा कुछ और भी मेरे शौक्स हैं, जैसे मैं गाने गाते रहता हूँ हमेशा।
1: अब हम फिर से आपकी विग वाली बात पर आ जाते हैं, आपके अनुभव कैसे रहे विभिन्न कलाकारों के साथ जिनके आपने विग बनाए?
0: मैंने जिनके जिनके साथ काम किया उनसे मैंने हर इंसान से एक एक चीज़ सीखी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में हमेशा इंसान को वक्त पर चलना चाहिए।
1: कौन है वो?
0: अब सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक ही है, और जिनको देखकर जिन उनकी खासियत ये बताऊं मैं आपको, उनको देखकर लोग अपनी घड़ियां सीधी करते हैं।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया?
0: एक मेरे मनचाहे कलाकार हैं जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। देखिए, वो इंसान एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, डांस डायरेक्टर है, एक्शन है, ये समझ लीजिए कि एक फिल्म के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो पूरा पैकेज है। उनके साथ मैंने कम से कम 12-13 फिल्में की है मराठी, और सचिन साहब मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए विग बनाया हो और उसमें बहुत किसी ने मीन मेख निकाली हो?
0: ऐसा एक्ट्रेस जो होती है, एक्ट्रेस मतलब जो लेडीज स्टार्स होती है, उनके नखरे थोड़े ज्यादा होते ही है, तो हमको प्रोड्यूसर पहले बोलता है कि वो थोड़ी नखरेबाज है, तो तुमको खाली उनके सामने हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना वही जो हम बोलेंगे। तो हम लोग भी क्या, हम लोग प्रोड्यूसर के आगे हम लोग भी कठपुतली रहते हैं, क्योंकि पेमेंट हमको वहीं से मिलना है, हीरोइन तो पेमेंट करेगी नहीं, तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलाकर इनके साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग भी यस मैडम करते रहते हैं, कि उससे बुलाओ हमको खाली, तुम्हारे खाली यस मैडम बोलना, नो बोलने का ही नहीं।
1: अनवर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार कैंसर जैसी बीमारी की वजह से जो उसमें इलाज होता है केमोथेरेपी, बाल चले जाते हैं।
0: ये तो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। पर क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है ना मैडम, कि वो जैसे इंजेक्शन बदन

0: जाता है, एक ही रात में तकिए पे सारे बाल रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या पेशेंट बहुत डर जाता है।
1: हाँ।
0: तो मैं वीक तो बाद में बोलता हूँ, पहले पेशेंट से 2-4 घंटा बात करता हूँ। तो कैंसर से जब बाल जाते हैं तो मैं तो मोस्टली, अभी आपको एक बताऊंगा बात कि मैं यहाँ से पुणे तक गया अपने खर्चे से, अपने पेट्रोल से, उनका मेजरमेंट लेने के लिए, उनको वीक देने के लिए, और मैं उनसे चार्ज नहीं करता हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मेरी खासियत है। जब भी
1: मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे आप चार्ज?
0: मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी कोई बोलता है नहीं इतना महंगा, हमने वहाँ पूछा था, वहाँ पे उसने 18,000 रुपये बताया था, यहाँ पूछा था उसने हमको 20,000 रुपये बताया था। मतलब उसने बताया था आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ मेरे पास रेडीमेड भी रहता है, जैसे हमने शूटिंग में, जो शूटिंग होने के बाद में बचते हैं,
1: हाँ,
0: वापस रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से एडजस्ट कर देता हूँ उनको। कभी कभी कभी कभी कुछ होता है ऐसे जो बहुत पैसे वाली होती है, बोले नहीं हमको मेरे जैसे थे ये फोटो देख के आपको ऐसा ही बनाना है, तब मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में बोलता हूँ मैडम अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा बनाना है तो मेरे को खाली आपके बाल के पैसे आप दे दीजिए, या तो बाल ला के दे दीजिए, आपको ये आदमी से मिला देता हूँ जो हमारे एजेंट हैं, हम लोग बाल लेते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए कि मेरे 300 रुपये बाल चाहिए मेरे को, अब कितना पैसा लोगे आप, उसको उसकी पेमेंट कर दीजिए, आई विल मेक फ्री, मैं उसका जो मेकिंग चार्ज लूँगा आपसे। ऐसा भी मैं कई बार करता हूँ।
1: हाँ।
0: क्योंकि ये ऐसी बात है ना, क्योंकि आदमी जब कैमो लेता है तो उसको 2-4 लाख रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर मैं और एक बदोशन डाल दूँ बाल का तो ज़रा अच्छा लगता नहीं।
1: तो ऐसा जो करता है उसका खुद अच्छा ही होता है ना?
0: मेरा तो हमेशा अच्छा हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ आजकल जो हेयर वीविंग का जो चक्कर है, हेयर पेस्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर खाली पेस्ट हो जाएगा मगर लगेगा बिल्कुल नेचुरल।
1: अच्छा, उसको भी निकाल के रखना पड़ता है?
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,
1: वो लगा ही रहता है, एक बार लगा।
0: हाँ, यस यस,
1: मतलब जितने बड़े लगाए वो बड़े बढ़ेंगे नहीं, बस
0: बढ़ेंगे नहीं, बस उनके हाइट मुखरी की तरह
1: जितने धो सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शैम्पू कर सकते हैं,
0: शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए।
1: अच्छा, खर्चा कितना आएगा? अगर
0: 5,000 से शुरुआत ड्रामा होता है उसका तो 50 तक जाता है।
1: अच्छा, ये विक के साथ इसका भी ऐसा?
0: अभी आजकल वीक कोई पहनता ही नहीं, जमाने खत्म, खाली फिल्म में भी यूज होती है बस।
1: हाँ, मतलब थोड़ी देर के लिए। हाँ।
0: बाहर जो आजकल लगाते हैं वो हेयर वीविंग करा लेते, पैच लगा लेते हैं आजकल।
1: अच्छा।
0: और इतनों के लगे हुए यू कांट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने नेचुरल लगते हैं आजकल।
1: अच्छा। अनवर पावस्कर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे विग मेकर अनवर पावस्कर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी।

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चली गई। ओहो कहाँ गई? अभी रोटी यहीं रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई।
1: कौन मम्मी?
0: तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत है, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है?
1: नहीं नहीं मम्मी, जाना है जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए।
0: ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
2: बहू जी मैं पूछूं कि अब किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको, तुझे भी इसी समय आना था। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
2: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ चीज़?
0: देख मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
2: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि तेरे बूट तो बहुत महंगा आवे हैं, आप कितने रुपए गज लाई हैं?
0: ओफो जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? तेरे वुल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
2: अच्छा अच्छा मैं चली।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
3: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाख बार कहा कि मेरे बीच में मत बोला करो।
3: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने है।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
3: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे, यही सोचकर मैंने 2 दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से 3 खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
3: ओहो तो पंद्रों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाएगी।
0: तो और क्या करूं, आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब?
3: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा। हाँ अब क्या है साहब, देखो जब मिल जाए।
0: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन?
3: देखो भाई मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर
4: दूंगा।
3: अरे रे रे ये क्या कर रही बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
4: डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी, देखिए सुई घुस गई।
3: अरे सुई देखो तो ये रही। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं चुभी है, चुभी है। चल चल भाग जा यार।
4: मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए।
3: क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है? और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ उठने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है।
3: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के

0: सिलसिला नहीं जाएगा।
1: भाई देखिए, अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा, फिर सीखूंगी भी किससे?
0: क्यों, मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो, उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
1: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आनी
0: चाहिए। अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप कपड़े दर्जी के सिलने नहीं जाएंगे बस।
2: ओखो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्यों लाया है, बड़ी सुंदर लगे हैं। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारे बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
1: हाँ हाँ सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी। ये तो हो गया, अब कैसे काटूं?
2: मैं बताऊं बहू जी?
1: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी है जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है, ये पजामा है पजामा।
2: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी हम गौर से सुने थे।
1: अच्छा बता आप कैसे काटूं? बड़ा सुने थी।
2: देखिए इसको जोर से कोई ताननी, अच्छा फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
1: बेबी बेबी
3: क्या है मम्मी?
1: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ए ऐसे।
3: अच्छा मम्मी।
1: अरे अरे इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
3: अच्छा,
1: मैं काटती हूँ।
3: काटिए। ये क्या है मम्मी?
1: ये कैसा हो गया?
3: ये तो
1: तिरछा हो गया।
3: ये पैजामा है भला।
1: मैं तुझसे कब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो एक सा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूं?
2: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
1: हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
2: दबाइए। हाँ ये आओ।
1: ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है।
3: क्या हुआ?
1: हाय बहुजी, सुई तो बैठी थी, उंगली के आर पार हो गई।
4: हाय मैं क्या करूँ?
2: बहुजी पहिया आगे को घुमाओ।
1: नहीं नहीं बेटे घबराओ नहीं, अरे मोहिनी जो डॉक्टर को बुला लाना।
3: हाँ मम्मी।
2: मैं बोलूँ बहुजी, पहिया उल्टा फेरो, हाथ निकल जाएगी।
3: मम्मी

0: इससे नहीं मोहनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे।
2: मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ। बहू जी, बाबू जी आज लौटेंगे?
0: हाँ आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गे।
0: हाँ, एक महीने से तो ऊपर हो गया। अरे राम, मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बाबू जी।
3: बेबी, बेबी, दबा दबा बेबी।
0: आती हूँ। जा मोहिनी देख, वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबू जी, नमस्ते। बाबू जी
3: नमस्ते। कहो भाई, सब ठीक ठाक है ना? अरे लीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
0: अरे क्या बताऊं क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटर लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन

0: हूँ।
1: अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए।
0: कौन है? मोनी देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
2: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मरे दी, अब शायद ही इम्तहान दे पाऊँ, कलमी नहीं पकड़ी जाती।
0: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी पकड़ लेगी, जरा ध्यान से पढ़ती रहो बस, इम्तहान तक सब ठीक हो जाएगा।
3: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
0: मोहिनी, नौकरानी गई?
3: हाँ बाबूजी।
0: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो, और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
3: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी अभी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
0: मान जाए बुरा, मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही
3: है? जी जी जाती हूँ। बेबी देख तो कौन है।
0: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
3: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
0: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भर सिया है, 2 महीने हो गए मशीन है।
2: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
0: क्या कह रही है?
2: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सी लूं।
0: सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कह दे मशीन खाली नहीं है।
3: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
2: अच्छा।
0: क्या क्या कहा तुमने, यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
3: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खिस तो जाएगी नहीं।
0: हाँ ठीक है ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना, एक दिन ना पछताओ तो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती। क्या
3: ओ, आप तो
0: ठीक है, मेरा क्या है?
2: डैडी डैडी,
0: क्या है?
2: एक मिस्त्री आया, उसने ये पहचान दिया है।
0: क्या है दिखा। नीना, ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
3: दुकान पर?
2: हाँ मम्मी, गई तो थी, वही जब डॉली ने उसके अंदर सला खड़ा कर पहिया चला दिया था।
3: अरे जरा सी खराब हो गई थी।
0: जरा सी खराब हो गई थी, ये देखो ये देखो। मैं पूछता हूँ कौन देगा ये रुपए, अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
4: बाबूजी बाबूजी।
0: आप कौन है? कौन है भाई?
4: मैं झा साहब के यहाँ से आया हूँ, मशीन लाया हूँ।
0: चले आओ अंदर।
4: अच्छा, कहाँ रख दूँ बाबूजी?
0: यही मेज पर रख दे। ये मशीन को क्या हुआ?
4: बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी, सो थोड़ी सी खराब हो गई।
0: ये
4: है।
0: थोड़ी सी खराब हुई है?
3: क्या हुआ?
0: हुआ है हमारा सर और क्या, देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2-1 जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए।
3: हाय राम, ये तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
0: ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
4: कहाँ बाबू?
0: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
3: कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइएगा।
0: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी, मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना, भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।
5: मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी, आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉकस्टार फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल ए आर रहमान

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। जॉनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also

0: In a healthy planet, our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों

0: पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग

असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया चेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM। इस वक्त रात्रि के 9 बज रहे हैं, वक्त है आपकी फरमाइश का। रातों को अक्सर जगाती है कोई भूली हुई याद, धड़कनों को छू जाती है किसी नगमे की आवाज़। तन्हाइयों का ये आलम भी बड़ा हसी है, जब सुरों के सहारे बयां होने को है दिल का राज। जी हाँ, तो दिल के राज भी यहाँ बयां होंगे, और दिल के ये राज निकलेंगे गीतों के रूप में जब हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपकी फरमाइश। और कौन कौन से श्रोता आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और किन की फरमाइश पर कौन से गीत हैं, चलिए मिलकर शुरू करते हैं इस सफ़र को। और प्रोग्राम का पहला शुरुआती नगमा बेहद ही खूबसूरत अनुरोध फिल्म के इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ है ये गीत है। किनकी फरमाइश पर है बताएंगे, पहले सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा नगमा।

इत्तेफाक से ही सही, हम तमाम श्रोताओं का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके फरमाइश प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सीमा के साथ। सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का ये शुरुआती नगमा अभी आपने सुना अनुरोध फिल्म से, और इस फिल्म के इस गीत के लिए हमें आपकी जो है फरमाइश मिली पत्र के माध्यम से। नेशनल रेडियो श्रोता संघ के हमारे ये श्रोता हैं न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर सिटी से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम, इंजमाम मोहम्मद, फतेह अली, रवि किशन शास्त्री, संतोष कुमार, आशुतोष, गुलशन कुमार नंदा, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी और आर के कानपुरी। इसी के साथ ही तमाम सारे श्रोता इस वक्त ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं, इनके नाम भी हम यहाँ शामिल करेंगे। और ये हमारे श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, किरण और जग्गी दुआ उनके साथ में, जगमोहन प्रजापति। इसी के साथ ही कौन श्रोता जुड़ चुके हैं इस वक्त हमसे, और ये श्रोता हैं यहाँ पर जो जुड़े हैं अनिल कुमार गंवाड़कर जी जुड़ चुके हैं बदलापुर मुंबई से, सिद्धांत गंवाड़कर, प्रीता गंवाड़कर, लाडा टुकटुक गंवाड़कर, मेहरनगर उमर खेड़ से अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गंवाड़कर, सुमित गंवाड़कर, कुमारी ध्वनि गंवाड़कर परी, तमाम सारे श्रोता इस वक्त हमसे जुड़े हैं, इनके नाम हम यहाँ ज़रूर शामिल करेंगे। और ये हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं मन कारा मंदिर बीटीए कॉलोनी कर गए ना बरेली उत्तर प्रदेश से, बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, भारती, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति और शिवांश और आपके साथ पृथ्वी सिंह। कुछ एक और श्रोताओं के भी नाम हम यहाँ शामिल कर लेते हैं अगले गीत को सुनवाने से पहले। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। अब प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं कौन सा ये अगला गीत है। मजबूर फिल्म से ये गीत है, किशोर कुमार की एक बार फिर से आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत के लिए हमें आपका यहाँ पे पत्र मिला है और ये पत्र हम शामिल कर रहे हैं इस गीत के लिए। ये हमारे श्रोता हैं रमेल नगर बिठूर से श्यामलाल बिट्टन, बड़क्के, निशा, शाकिर अहमद, आकाश, राजेंद्र, राम दुलारी और अभिजीत सिंह। तो चलिए इसी फरमाइश के साथ प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गाना आप सभी को मजबूर फिल्म से।

के माध्यम से इस वक्त तमाम सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और आप सभी का नाम हम यहाँ शामिल करेंगे, आपकी ईमेल शामिल करेंगे। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, इसी के साथ ही हमारे अगले श्रोता हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और ये हमारे श्रोता हैं सोनू रवि राज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब से। और अगले श्रोता कौन से हैं? ताज मोहम्मद अंसारी जी का ईमेल हम तक पहुंच गया है, रेगुलर लिसनर हैं हमारे ताज मोहम्मद अंसारी। गुलाम साबिर राही मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और इसके साथ ही ईमेल के माध्यम से हमारे ये श्रोता जुड़ चुके हैं हमसे, ये हैं हमारे श्रोता, इनका नाम यहाँ हम शामिल करेंगे, पूर्वा पिंडौर रायबरेली से।

जितेंद्र पाल, सम्राट पाल, विराट पाल, अशोक पाल, पीयूष पाल, शकुना पाल। चलिए, तमाम सारे श्रोताओं का यहाँ नाम शामिल हो चुका है और प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला गीत कौन सा है। बेहद ही खूबसूरत सा गीत है ये, तलत महमूद की आवाज़ में, सुजाता फिल्म से। एसडी बर्मन का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ यह गीत है। और इस गीत के लिए हमें जो फरमाइशी पत्र मिला है, ये मिला है नेशनल रेडियो श्रोता संघ की ओर से, कानपुर सिटी से। शकीला बेगम, बेबी शहनाज और रुबीना जरीन, हीना मोहम्मद अहमद और अबरार अहमद, एम ए कानपुरी का। तो ये तमाम सारे श्रोता जिन्होंने इस गाने के लिए हमें अपना फरमाइशी पत्र भेजा है। बेहद ही खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं आप सभी को, सुजाता फिल्म से, तलत महमूद की आवाज़ में।

आपकी फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से 103.7 FM पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से देश दुनिया के कोने कोने से। इस वक्त रात्रि के 9:22 का वक्त हो रहा है पूरा, और अब देखते हैं कि अगली ईमेल फरमाइश किनकी हम तक पहुंची है। ये हमारी श्रोता है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। मोहाली से ये श्रोता हम तक जुड़ चुके हैं, और ये श्रोता हैं सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादगा। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से लुबना अंसारी, आफ्ताब अंसारी, आलिया अंसारी, अनवर मास्टर। और आपने लिखा है आकाशवाणी कानपुर हमारे दिल के बेहद करीब है, तो आप सभी श्रोता भी हमारे दिल के बेहद करीब है। और अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आके देखेंगे अगला गीत कौन सा है और किस फिल्म से है, किनकी फरमाइश पर है। तो ये गीत है अनामिका फिल्म से, आर डी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत है। और इस गीत के लिए हमें आपका फरमाइशी पत्र मिला है कस्बा अमरौदा से, अब्दुल जब्बार राइन, मुन्ना शेख, नफीस पाकिजा, तारिफ आरिफ राइन, शहीद अनवर, जुनैद खां, आसिफ तालिब, भीमा धर्मात्मा और जय वीरू। इसी के साथ ही प्रोग्राम में सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गाना अनामिका फिल्म से पहुंच रहा है आप सभी तक।

30 मिनट का वक्त। और ये श्रोता हमसे कहाँ से जुड़े हैं अगले, देखिए इनकी अभी ईमेल हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लियरली नहीं दिख रही है, तो चलिए फिलहाल अभी प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा गीत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। ये अगला गीत है हरियाली और ये रास्ता फिल्म से, लता और मुकेश की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत है। और इस गीत के लिए हमें आपका पत्र मिला है, श्रोता है हमारे खलासी लाइन मित्र मंडल रेडियो श्रोता संघ के सुरेंद्र सिंह राजपूत, हार्दिक, प्रवीण सिंह, गीता वर्मा, प्रियंका राजपूत, नेहा, साबिर, राजा वर्मा, ईशा वर्मा, पवन वर्मा, आपके साथ पूजा वर्मा और समस्त राजपूत परिवार। तो इनकी फरमाइश पर हम ये गीत सुनवाएं। इससे पहले ईमेल फ्लोट हो चुकी है कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये श्रोता जुड़ गए हैं किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, और साथ ही आपके एक और ईमेल हम यहाँ जल्दी से शामिल कर लेंगे ताकि जो श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनके नाम यहाँ शामिल हो सकें। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। तो चलिए इन्हीं नामों के साथ प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे। बेहद ही खूबसूरत सा ये गीत आपकी फरमाइश प्रोग्राम में पहुंच रहा है।

प्रोग्राम में बढ़े आगे इससे पहले तमाम सारे श्रोता जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमसे, उनके नाम यहाँ हम ज़रूर शामिल करेंगे। और ये श्रोता हमसे ईमेल के माध्यम से जुड़े हैं, कृष्णा घोड़ के प्रशांत शिंदे, ऋषि यशराज, सुनीता रोहदास चौक पंढरपुर सिटी से। और इसके साथ ही अगले हमारे श्रोता अजीजुर रहमान जी जुड़ चुके हैं, और ये हमसे कहाँ से जुड़े हैं, नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से। और आपके साथ में है अजीज मतीन शाइक और फारूक सैयद खलील मुबीन और मोहम्मद यासीन। और इस वक्त फिरोजपुर पंजाब से हमसे जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल, अविराज, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। तमाम सारे श्रोता जो इस वक्त जुड़े हैं और इनका नाम शामिल करेंगे। रेगुलर लिसनर हैं हमारे सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। और अगले श्रोता कौन से जुड़े हैं, ये हमसे जुड़ चुके हैं फारूक अली, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा ऊपरकोट बुलंदशहर से, एमएस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं इन्हीं ईमेल मैसेजेस के साथ आगे, और देखते हैं कौन सा गीत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में अगली फरमाइश। बेहद ही खूबसूरत सा गाना सौदागर फिल्म से, और इस गीत को जो सुना चाहा है रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीनू, पवन पाथ, शिवांश और अभिजीत ने सुना चाहा है। तो इसमें आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह, कविता कृष्णमूर्ति की, आपके साथ मनहर उदास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आन बख्शी का लिखा हुआ गीत है। चलिए पहले सुनते हैं ये गीत, उसके बाद शामिल करेंगे कुछ और ईमेल जो हम तक पहुंच रही हैं इस वक्त। अभी आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गाना सौदागर फिल्म से।

शास्त्री नगर बीट शहर से जुड़ चुके हैं हमसे आशा सपकाल, किशन, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। इसी के साथ ही एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग। इसके साथ ही कौन श्रोता जुड़े हैं हमसे? हमसे जुड़ चुके हैं बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी और आपके साथ में वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। तमाम सारे श्रोता इस वक्त जुड़े। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ नाम आप सभी के शामिल करें। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इसके साथ ही अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। जी आपका नंबर भी आ चुका है। फिलहाल ये श्रोता हमारे हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और कौन से श्रोता जुड़ चुके हैं? करणवीर हाउस भू चौक कनेचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम और दमन अभिजोत के संग तमाम सारे श्रोताओं के नाम हमने यहाँ शामिल कर लिए हैं। देख लेते हैं कुछ और श्रोताओं की भी ईमेल ब्लिंक करिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो इनके नाम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शामिल कर लेंगे। जाकिर जी हमसे जुड़ चुके हैं, ये श्रोता हैं हमारे शाह मंसूरी, रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। चलिए आप सभी के नाम शामिल कर लिए और अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे, देखेंगे कौन सा गाना है आप सभी की फरमाइश पर। और ये अगला गीत है बम्बई का बाबू फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ है, एस डी बर्मन का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत है। और इस गीत के लिए हमें जो पत्र मिला है ये श्रोता है हमारे अधेरी बाबली मूसा नगर से माजदा बेगम, एम नईम, शफिया, परवीन बेगम, अली हैदर, रफत हबीब आबदा और अकबरपुर से इकरा बेगम, अनीस बेगम, रफीक हमराही, रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। तो चलिए करते हैं आपकी फरमाइश पूरी, सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

और जब ऐसे ही पसंद के गीत होंगे आपके फरमाइश प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में बहार आनी तो तय बनती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में देखते हैं किन श्रोताओं का ईमेल पहुंचा है हम तक। हमारे ये श्रोता हैं ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव सौरभ और खुशी कटियार का। इसके साथ ही अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ पर। ये हमारे श्रोता हैं बसंत कुमार सिन्हा जी सावका, और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। आपके साथ में रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, अभय कुमार, बहु रिम्मी, तनुश्री, नन्हे मुन्ने, अनविका, अजय, तनु, पिहरा बाजार, झुमरी तलैया गिरिडीह से, शिवानी, प्रियंका, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनुरुद्ध और हीरा मोती पन्ना, वसंत लालसा, तमाम सारे लोगों के नाम हमने यहाँ शामिल कर लिए हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम में ये श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा। और इसके साथ अगले श्रोता कौन से जुड़े हैं, छत्रपति संभाजी नगर से सूर्यवाड़े औरंगाबाद के ये हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी। और अगला गीत आपको सुनवाएं उससे पहले कुछ एक ईमेल शामिल करेंगे हम यहाँ पर ज़रूर, क्योंकि तमाम सारे श्रोता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं दूर दूर से। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं, इनका ईमेल हम यहाँ जल्दी से शामिल करेंगे। और ये फारूक अली जी हमसे जुड़े हैं कस्बा गुनौर यूपी से, फारूक अली, फैज़ी फराज फरहीन के साथ में। और इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, कौन सा गीत है आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। जी हाँ, साजन का घर फिल्म का ये गाना है, साधना सरगम, कुमार सानू की आवाज़ है, नदीम श्रवण का संगीत है। और इसके लिए हमें आपकी ईमेल फरमाइश मिली है नीलू शर्मा जी की रूपपुर चंदेला से। और आज के गुड इवनिंग कानपुर गाने तराने प्रोग्राम इनको बहुत ही पसंद आया है और इस गीत के लिए इन्होंने फरमाइश करी, ये गीत सुनवाएं हम आपको। और इससे पहले एक और ईमेल हम यहाँ जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रोता, जो श्रोता एक बार ईमेल कर चुके हैं, जिनके नाम शामिल हो गए हैं, कृपया कर वो बार बार

मिलना करें। बड़ा भैरमपुर कानपुर नगर से संदीप कुशवाहा, रंजीत कुशवाहा किसी भी इन्होंने गीत में शामिल करने के लिए कहा है। तो चलिए प्रोग्राम में फिलहाल अभी आपकी फरमाइश पर ये गीत बेहद ही खूबसूरत सा साजन का घर फिल्म से पहुंच रहा है आप तक, आपकी फरमाइश प्रोग्राम में।

प्रोग्राम बढ़ रहे समापन की ओर, इससे पहले ये वक्त हो समाप्त, कुछ श्रोताओं के नाम शामिल करेंगे। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत और आरती रानी का। इसके साथ ही ये हमसे श्रोता जुड़ चुके हैं गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान फैजान, उना और उस्मान अंसारी।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बीकानेर से रानी और बिट्टू झाब, इसके साथ ही पटियाला रोड गंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुशरत बेगम, बेबी अरिबा और हबीबा, और इसके साथ ही ये श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, जयश्री। और अगली ईमेल भी हम देख लेते हैं जल्दी से, श्रोताओं के नाम शामिल कर लें। ये हमारे तखतपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। और यही थी आज के आपके फरमाइश प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति। और ये प्रोग्राम आज आपने सुना सीमा के साथ में। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि अब हम इस प्रोग्राम का समापन यहीं पर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना खास वाला ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम को लेकर, छाया गीत को लेकर कुछ ही देर में। बस यहाँ पर अभी

0: का कांटी केंद्र 103.7 FM और अब आइए सुनते हैं छाया गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सलूशन
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
3: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
4: नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए? जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है।

0: कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी

0: मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सपने

0: पिघलाया।
1: आज के छाया गीत में बस इतना ही, दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
4: इसका सलूशन,
3: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
4: नेचुरल है
3: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

इसी गीत के साथ ही समाप्त हुआ प्रोग्राम ढलती जाए रात। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM। इस वक्त रात्रि के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

अब हमारा आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।